सुरेशशरणं शर्म विश्वरेता प्रजाभवः अह संवत्सरो व्याळ प्रत्यय सर्वदर्शनः अज सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धि सर्वादिरक्षुतः वृषा गभीर मे आत्मा सर्वयोग विनुसृतः वसुर्वसुमना सत्य समा

ो बृहद्रूप शिपिविष्ट प्रकाशनः ओजस्तेजोद्युतिधर प्रकाशात्मा प्रतापनः रुद्रस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः अमृतांशुर्भवो भानुः शशबिन्दु

गहनोगुह व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो द्रुवः परदिपरमस्पष्ट तुष्ट पुष्ट सुबेक्षणः रामो विरामो विरतो मार्गो नेयो नयो नयः वीरशक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुंठ पुरुष प्राण प्राणद प्रणव पृतुः हिरण्यगर्भ शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरोक्षजः ऋतुसुदर्शन काल

सदानंदो नंदिर ज्योतिर्गणेश्वरः विदितात्मा विदेयात्मा सत्कीर्तिश्चिन्न संशयः उत्तीर्ण सर्वतश्चक्षुरणीशः शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूधि

तमिल प्रजा की छाप नया प्रजा भक्तिमान सदोताय शुचित सत्त मानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्ना मे तत्र कीर्तयेत् यश प्राप्नोति विपुलं याति प्राधान्यमेव च।

ॐ नमः सहस्रेण स्तोतुमिच्छति पाण्डव सोऽहमेकेन श्लोकेन स्तुत एव न संशयः स्तुत एव न संशय ॐ नमेति व्यासोवाच वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव

नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, आप सुन रहे हैं एमओपी कम्युनिटी रेडियो 107.8 आर रेडियो आर कम्युनिटी आर प्राइड। मेरे साथ मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी आरजे हर्षा। हां जी, एक बार फिर आपसे मुलाकात बहुत दिनों के बाद। शुरू करते हैं हमारा शो एक बहुत ही मधुर गीत शिफाली के साथ, भगवान के नाम से।

0: प्रचोदया।
1: वाह, ये होती है एक शुरुआत, एक अच्छी शुरुआत। इतनी अच्छी आवाज मधुर शुरुआत के लिए काफी है। समय, टाइम, नेरम, हाँ जी, हमारी जिंदगी में समय कितना जरूरी है। कहा जाता है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। आज का ये शो थोड़ा सा सीरियस होके स्टार्ट करते हैं और हमारे साथ जुड़ रही हैं देवांशी मेहता अपना स्पीच देने के लिए, जिनका टॉपिक है समय का सदुपयोग। हाँ, थोड़ा सा भारी टॉपिक है, पर देवांशी इसे बहुत ही मजेदार बना देंगी। नमस्ते देवांशी, कैसी हैं आप?
2: मैं ठीक हूँ।
1: हाँ जी, शुरू कीजिए।
2: समय का सदुपयोग। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पर ले होएगी बहुरी करेगा कब। समय एक अनमोल वस्तु है, संसार में खोई हुई वस्तु, खोया हुआ धन वापस मिल सकता है, किंतु खोया हुआ समय धन देकर भी खरीदा नहीं जा सकता। दुनिया में ऐसी कोई भी घड़ी नहीं है जो गुजरे हुए घंटों को फिर से बजा दे। समय के सदुपयोग पर ही हमारे जीवन की सफलता प्रायः निर्भर रहती है। जीवन की कीमत वही इंसान समझता है जो एक एक पल की कीमत समझता हो। किसी अंग्रेज लेखक ने कहा था, समय की चांद गूंजी होती है, यदि हम उसे सामने से पकड़ लेंगे तो वह हाथ में आ जाएगा, नहीं तो बाद में पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ भी हाथ न लगेगा। समय के सदुपयोग द्वारा मूर्ख विद्वान तथा निर्बल सबल हो सकते हैं। बहुत से लोग आलस्य में पड़े हुए अपने समय को व्यर्थ खोया करते हैं। आलस्य उन्नति की जड़ों को काटने वाला है। जो लोग समय की कीमत नहीं जानते, उनकी दुनिया में कोई कीमत नहीं रहती। समय का दुरुपयोग करने वाले व्यक्ति और राष्ट्र दोनों दुखी और पतनशील होते हैं। व्यर्थ की बातें करना, आलस्य में पड़े रहना, बुरी संगति करना, बुरे आचरण में लगे रहना समय का दुरुपयोग है। शेक्सपियर ने एक बार कहा था, मैंने समय को नष्ट किया और अब समय मुझे नष्ट कर रहा है। समय का सदुपयोग करने वाले मनुष्य जीवन में शांति और सुख पाते हैं। उसकी दृष्टि में तो समय की पूजा ही ईश्वर की पूजा होती है। इतिहास इस बात का गवाह है। समय के विभाजन से हम अध्ययन, व्यायाम, सत्संग, समाज सेवा, मनोरंजन आदि अनेक कार्य सफलतापूर्वक कर सकते हैं। यदि हमें अपने जीवन से प्रेम हो तो अपने बहुमूल्य समय को नष्ट नहीं करना चाहिए। शायद समय बर्बाद करते वक्त हम भूल जाते हैं कि प्रत्येक क्षण हमें मृत्यु की ओर ले जा रहा है। जो समय को नष्ट करता है उसे समय नष्ट कर देता है। समय के महत्व को पश्चिम के देशों ने समझा है, इसलिए उन्होंने जीवन के प्रत्येक क्षण में सफलता प्राप्त की है। वास्तव में वही मनुष्य बुद्धिमान है जो अपने समय का सदुपयोग कर उन्नति के पथ पर अपने कदम दृढ़ता के साथ रखता है, निरंतर इस बढ़ता रहता है। उपसहार है, समय नदी की धारा जिसमें सब बह जाया करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। समय होता है मूल्यवान, इसे समझने वाला है बुद्धिमान। जो इसका मूल्य समझेगा वही जीवन में सफल रहेगा। धन्यवाद।
1: बहुत अच्छे देवांशी, आपका ये स्पीच सुनकर हम सब समय का बहुत अच्छा सदुपयोग करेंगे। आलसी यानी लेजी बिल्कुल भी नहीं रहेंगे और हम देखेंगे कि समय अच्छे से उपयोग हो रहा है। अब शो में आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही फेमस गाना गाने वाली है संयुक्ता। वेलकम संयुक्ता।
3: नमस्ते।
4: है क

0: वाह, कितनी सुरीली आवाज है ये। बहुत अच्छे संयुक्ता,
1: धन्यवाद।
0: अब आ रही हैं कामना बोहरा, जो एक बहुत ही अच्छा पोएम गाने वाली हैं, जिसका शीर्षक है सच्ची मंजिल सच्ची राही।
2: सच्ची मंजिल सच्चा राही, ख्वाबों के परिंदे कभी उड़े नहीं, होठों पे शिकवे है पर जुबान नहीं, क्यों इस तरह बंधे है हम समझे नहीं, हथकड़ियां क्या कभी टूटेगी नहीं, हो अगर विश्वास हमें खुद पर, फिर रास्ता आसान है मुश्किल नहीं, पाने की कोशिश अगर हो दिल से, भगवान का साथ भी छूटा नहीं, हर राही अपनी मंजिल ढूंढता नहीं, वो अपनी राहें है खुद बनाता, वो राही ख्वाबों सिर्फ देखता नहीं, उसे पूरा करने की है हिम्मत जुड़ाता, हर रास्ता कांटों से भरा होगा, तुम्हारी हिम्मत का इम्तिहान होगा, डट के अगर तुम्हें हिम्मत दिखाई, फिर दुनिया होगी बस तेरे नाम की।
0: बहुत अच्छी कविता थी कामना बोहरा। आप सुन रहे हैं MOP कम्युनिटी रेडियो 107.8, आर रेडियो आ कम्युनिटी आप राइट। अब नेक्स्ट आ रहे हैं शेफाली बदानी, एक बहुत ही अच्छा गाना है।

0: सके।
1: वो ये मेरा फेवरेट गाना था। अब हमारे साथ आ रही हैं अनन्या, जो कुछ अनोखी पशु पक्षियों का तथ्य बताएंगी हमें। नमस्ते अनन्या।
2: हाय हर्षा। पशु पक्षी हमारे संसार में सभी जगह मौजूद है। पक्षियों की चहचहान और पशुओं की आवाज हमारे जिंदगी का हिस्सा हो चुका है। पशु पक्षियों हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत कुछ करते हैं। अब हमारी बारी है। इस बार गर्मी 45 डिग्री से ज्यादा होने की संभावना है, तो कृपया अपने छत पर पानी की कटोरी रखें ताकि प्यासे पक्षी पानी पी सके। अब मैं पशु पक्षियों के बारे में कुछ अनोखी तथ्य बताऊंगी। जब कैंगरू पैदा होते हैं, वे एक मधुमक्खी के आकार के होते हैं। ऊंट के 3 पलकें होते हैं। बंदर के 2 दिमाग होते हैं, जो हमारे पास भी नहीं होता। एक अपने शरीर को काबू में रखने के लिए और दूसरा अपने पूंछ को। डॉल्फिन्स

0: एक आंख खुला रखकर सोते हैं। प्राचीन इजिप्ट में बिल्लियों, हाँ बिल्लियों जो हमारे आसपास घूमते रहते हैं, उनको भगवान मानकर उनकी पूजा की जाती थी। एक दिन में हाथी सिर्फ 2 घंटे के लिए सोते हैं। उल्लू एकमात्र पक्षी है जो नीला रंग देख पाता है।
1: अरे ये तथ्य तो मुझे भी नहीं पता थे। बहुत ही अच्छे अनन्या। अरे ये तथ्य तो मुझे भी नहीं पता थे। और अभी हम बुला रहे हैं संयुक्ता को, माहौल में कुछ रंग भरने के लिए एक प्यारा सा गीत गाएंगे।

0: बहुत ही सुरीली आवाज थी। आप सुन रहे हैं MOB कम्युनिटी रेडियो 107.8 मेरे साथ आ कम्युनिटी आ रेडियो आर प्राइड। अब हमारे साथ जुड़ रही हैं देवांशी मेहता फिर से एक छोटी सी कहानी सुनाने के लिए। नमस्ते देवांशी।
1: नमस्ते। प्रेम की कहानी। पुराने समय की बात है, एक शहर के आसपास के जंगलों में एक भेड़िया का इतना आतंक छाया हुआ था कि वहाँ कोई रास्ता चलने का साहस भी नहीं करता। वह अनेक मनुष्य और जानवरों को मार चुका था। अंत में उस शहर के एक महान संत फ्रांस्वा ने उस भयानक जानवर का सामना करने की ठानी। वे शहर के से बाहर निकले तो उनके पीछे स्त्री और पुरुषों की बहुत भीड़ थी। जैसे ही संत जंगल के समीप पहुंचे, वैसे ही भेड़िये ने उनकी तरफ रुक किया और उनकी ओर लपका। तभी संत ने उसकी ओर एक शांतिपूर्वक ऐसा संकेत किया कि भेड़िया ठंडा होकर संत के पैरों के पास ऐसे लौट गया जैसे कोई भेड़ का बच्चा हो। तभी संत ने उसे संबोधित किया कि देख भाई, तूने इस शहर को बहुत हानि पहुंचाई है और बहुत उत्पात किया है। वह इस वजह से तू बाकी अपराधियों की तरह दंड का अधिकारी है और इस शहर के लोग तुमसे बहुत घृणा करते हैं। परंतु यदि तेरे और इस शहर में रहने वाले मेरे मित्रों के बीच मैत्री स्थापित हो जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। भेड़िये ने अपना सिर झुका लिया और पूंछ हिलाने लगा। इस पर संत ने फिर से कहा, देख भाई, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अगर तू इन लोगों के साथ शांतिपूर्वक रहना स्वीकार करता है तो ये लोग भी तेरे साथ बेहद अच्छा बर्ताव करेंगे और साथ ही तेरे लिए खाने की भी व्यवस्था कर देंगे। क्या तू प्रतिज्ञा करता है? इस पर भेड़िये ने अपना सिर पूरी तरह झुका लिया और संत के हाथ पर अपना पंजा रख दिया। संत उसे शहर के बीचों बीच ले गए और सबको सामने एक बार फिर भेड़िये से ये बात कही तो भेड़िये ने पहले की तरह संत के हाथ पर हाथ रख दिया और उसके बाद वो भेड़िया 2 साल तक उस शहर में रहा और उसने किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाई। इस पर उसके मरने पर भी लोगों को बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर भी वो लोग हैरान थे कि ऐसे खूंखार जानवर ने अपनी प्रवृत्ति किस तरह बदल ली। उसे जिसने बदल दिया उसके अंदर एक चीज थी, ये किसी ने नहीं जाना। ये संत फ्रांस्वा का प्रेम पूर्ण बर्ताव था जिसने उसे बदल दिया और प्रेम की महिमा इसी को कहते हैं। कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी भी तरह के बुरे इंसान जो अपने स्वभावतः बुरा होता है, उसे हम अपने अच्छे बर्ताव से बदल सकते हैं अगर हम ऐसा करना चाहें तो, क्योंकि वो लोग जो समाज के विरोध में सोचते हैं उन्हें समाज से बाहर तिरस्कृत करने से कोई समस्या हल नहीं हो जाती है। जरूरत है तो बस उनसे और अधिक प्रेम पूर्वक बर्ताव की, जिससे हम उनकी जिंदगी बदल सकते हैं। धन्यवाद।
0: वाह, बहुत ही प्यारी कहानी थी और हमें ये पता चलता है कि प्यार से, प्रेम और प्यार के भाव से कुछ भी किया जा सकता है। अब आ रही हैं शेफाली एक गाना गाने।
2: ये दूरियां

बहुत ही प्यारा गाना गाई देवा। शिफाली आप बहुत अच्छे, बहुत ही प्यारा गाना गाएं और ये गाना मुझे बहुत ही पसंद है। अब हम इससे हमारे शो के अंतिम पड़ाव भी खत्म हो रही है। आप सुन रहे हैं MOP कम्युनिटी रेडियो 107.8 मेरे साथ आर रेडियो आर कम्युनिटी आप फ्रेंड। मैं हूं आपकी RJ हर्षा और हम फिर मिलेंगे, क्योंकि याद है ना, हम हैं साथी प्यार के।